0: Talk 100.3.
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

कह दो हर नजर से सबको ये बता दो कह दो हर नजर से कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से।

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurancemarket.ie.
1: This is Life Talk with Sobia Khan. Talk 100.3. Talk 100.3. Traffic.
2: All right, so there was some more of Pagalpan in Pyar, which is still tolerated. We're not on the roads if it's going on. We'll start with Al Khail Road and not looking bad at all. It's a little busy when you're approaching the interchange around Marabia Street, and that is Dubai Hills Mall if you're approaching. So just a little busy, but quite bearable. Russell Ho Road, very, very busy if you are connecting from towards Abu Dhabi direction and connecting to Business Bay, but no major issues that I see. Now let's come to the Star Roads, E311. How does that look? It was busy earlier, and right now I see a little busy if you are coming from Sharjah towards Dubai. It has been of various moods today. Sometimes the other way from Dubai towards Sharjah direction was more busier. Right now it's the other direction, that is Sharjah to Dubai around the Al Ghassais interchange. That is where you'll find it a little busy. This is from the northern to the southern side, Sharjah Dubai direction. And the other direction, Dubai to Sharjah, it is just around this Al Ghassais symmetry. But other than that, I see no issues whatsoever. And you can continue to take this route and drive not just safely, but happily as well. E11, similar, free-flowing, no issues from Dubai to Sharjah if you're coming in from Sharjah towards Dubai. So this is the situation when it comes to the major routes, your E11, which I just explained, and then E311 as well, and E44. Other than that, nothing major that I see around, but this is what I see, and sometimes you can miss the details as well. And if I've done that, you can be a helping hand to your fellow drivers on 0586-861-003. Don't forget to drive safely and keep it locked to Talk 100.3.
1: This is Talk 100.3.
2: Back, and loads that I want to share with you, so you're all updated for this week at least till 3 p.m. And then Neil comes in for TSP and takes you further ahead when it comes to business, sports, etc. So where were we? We were standing at this Thela, and this is Dubai Municipality coming into action. Now, they have issued an exclusive clarification. Thela means basically, you know, children these days, they're coming out of the house and it's a nice, lovely table and nice and clean cover on it as well. And they're selling something or the other, sometimes cupcakes, sometimes cookies, and people to appreciate them, go ahead and buy because it's from their neighborhood and all. But so far, what I have seen, that they don't even know their neighbors, because they'll say, oh, hello, how are you? What's your name? And all of that. Generally, you know, back home, they would know it even before you're born, what your name would be. That's how much we would know. But those times are gone now. But anyway, coming to the topic, because I want to share more news. So Dubai Municipality has issued an exclusive clarification to media, outlining here the rules residents must follow when they are selling food. That's right. These are residents, people. Okay. And they're selling food even from their own front gardens. So a social media trend which is showing children that they are selling homemade drinks and baked goods outside their family homes, it has captured hearts across the city. See, this is exactly what I told you when I saw the video. That was a month and a half back, and many were appreciating, but then there were some comments who said, you know, how can you do this? This can be unhygienic at times and things like that. So now the Dubai Municipality has come forward talking about it, and it is reminding residents basically that every lemonade stand comes with legal responsibilities. Influencers across Dubai have been sharing videos of young entrepreneurs offering everything from freshly squeezed juices to home-baked cookies. I think they're also referring to the same video. But anyway, commentators have widely praised the children's initiative and business spirit, but Dubai Municipality, I'll call it DM, has issued an exclusive clarification outlining the rules residents must follow when selling food, even from their own front gardens. the municipality confirmed that any food sale activity, no matter how small, requires prior approvals and licenses. So be mindful, if you have seen that video and it is encouraging you to do the same, you need prior approvals and licenses, no matter how small it is. And if you are selling it, if you're just giving it away, you know, every Friday, kisi ghar biryani ban rahi hai, koi meetha bana raha hai and you want to share, that is all allowed. But where money comes in, lot many other things comes in as well. These licenses must be obtained from the Dubai Department of Economy and Tourism. So they've also told you the solution. So this is the entity responsibility for regulating and issuing permits for commercial activities. So who is responsible? It is Dubai Department of Economy and Tourism, which is the entity responsible for regulating, issuing permits for commercial activities. Now, once a license is secured, the civic body steps in. Now, the second step. Here, the municipality is responsible for monitoring and inspecting licensed food and beverage business to ensure compliance with food safety standards, which are very, very strict. If you are a restaurateur, you would know what I'm saying. And if you know them, you would know what I'm saying, because at times, you know, they share information that how strict the standards are when it comes to hygiene and following rules, laws, because after all, it is public's health safety, right? So this is carried out through an integrated system, specialized inspection teams and advanced digital system described as among the most efficient globally. Now, the goal with DM said is to ensure the proactive protection of Dubai community from food safety risk. Now, the topic of home business. Dubai municipality clarified that while it encourages home-based businesses, residents must do everything the right way. They say, Dubai municipality, the municipality encourages home-based businesses provided they obtain the necessary licenses and operate within the approved regulatory and legislative frameworks, the civic body said in its statement. For families looking for a safer, licensed way to let children explore food sales, Dubai municipality already runs community initiatives. Now, these include the Young Entrepreneur Initiative, which is organized in Nahd al-Sheba and Al-Barsha. That place did look like Nahd al-Sheba, but I could be wrong. And also in Al-Barsha. So now, if you want to encourage your children, because they saw that video and they also have that entrepreneur Kira in them, and they're saying, Mama, Baba, we want to do this. And so this is another simpler way, not getting into the rut of license. And some people find it easier, tedious. I do, because all that paperwork and all documents and stuff like that. So when it comes to license, permissions, and all of that, instead, you have the option of getting into these initiatives. This one is Young Entrepreneur Initiative, organized in Nahd al-Sheba area for now, and Al-Barsha, that's what we know of. So at these events, people, young people, children can sell food product under the supervision of the municipality's food safety monitoring system. This will ensure product quality, strengthens proactive oversight, and also contribute to improving quality of life across the emirate. And you know, when I saw this video, I was looking at the cookies which were uncovered. Now, call it OCD or my nature. I was like, kahi makhi to nahi baith rahi iske upar, you know, and people will have that and they would get sick and all of that. And one was in the jar and all. And the little boy went very cute and he was talking to this gentleman. And meanwhile, the uncovered plate with lots of yummy cookies were kept on the plate. And I was just so bothered. Thankfully, there was no fly. But you know what I mean, at times, the way it is prepared, and if it's elder, responsible adults at home preparing, sometimes it's your elder siblings, sisters or brothers. Brothers at times are very fond of cooking and, you know, making people happy. The happiest way to get into someone's heart is not only men, I think it's human. So sometimes you have pets at home and you can be a little careless while packaging, or you let them enter in the kitchen and all of that. People do that, right? So keeping all of that stuff, this is like a layman like myself, all these things come to mind when it comes to Dubai municipality. There's so much more they would know. So this is something when it comes to public health, of course, encouraging them, but also making it a good balance, safe and encouraging. So what is the bottom line? Dubai municipality is urging all residents to adhere to applicable laws and regulations before allowing children to set up a stall outside the family villa. Parents here, because who pay? You pay, parents. You have to be, they'll catch you. Parents are advised to verify that the activity has obtained the necessary licenses. They will not talk to children, they will call you, and then you have to give the details. Licensing is the first step, Dubai municipality says, towards ensuring that food activities are subject to food safety inspections by the municipality's specialized teams. This is what the statement concluded with. So in other words, people, entrepreneurial spirit is encouraged, it is welcome, but the lemonade stand still needs paperwork. Not to discourage you, we gave you the option that you can head towards the Young Entrepreneur Initiative. Why not? There are more children like your children, and this is even furthermore exchange of similar energy, more ideas. So I think all the more, I think creative on that front. Yeah. What do you think now? Will this discourage you? Or will this, oh no, you cannot tell me now, only 5 minutes later. I want to cover more information. So this is, by the way, again, organized in Nader Sheba area and Al Bursa. You can just type Young Entrepreneur Initiative in Dubai, and that will lead you to the right areas. And with this, there's one story. Dubai Airport alerts residents of noise due to ongoing enhancement works. So if you have felt it, Dubai assured teams were working to keep disruption to a minimum during works at Terminal 1. These days, noise, you know, they really bug us. And you're like, kya ho gaya? Ekdam se aasman se bhi awaaz aa rahi hai, you know. So nothing to worry about. Alhamdulillah, all good, all fine. And this is now, they have come up with information that Dubai International Airport announced it was carrying out enhancement works across Terminal 1. The airport alerted residents of some noise. There were temporary changes in certain areas due to the ongoing works. Logo ne suni hongi and they must have got a little panicky or worried. So it assured teams were working to keep disruption to a minimum. So this comes 2 days after Dubai completed a major upgrade of the Terminal 1 bridge at Dubai International Airport, increasing capacity by 20% during one of the airport's busiest period. And the expansion took place as the bridge had reached its operational limits. Dubai Airport said the project was delivered in a live airport environment with careful planning to ensure the guest journey remains seamless. So this upgrade includes overnight installation of major steel spans and tightly managed road closures during off-peak hours to minimize disruption. The project also involved widening one of the key access roads leading to Terminal 1 from 3 lanes to 4. So I'm sure people who travel that route will be so happy. This is increasing stacking capacity at an important approach route to the terminal. So this is going to make life easier. UAE first partially closed its airspace, if you remember, on 28th of Feb, as the country took precautionary measures to protect flights, air crews, and the nation's territory after the conflict. And after the country lifted all precautionary restrictions on airspace, 2nd of May, Dubai Airport said it has entered the next phase of recovery operations. Alhamdulillah, onwards and upwards. So this is something that you should be knowing. All the news which are trending, we have spoken about it, and just quickly reminding you, if you have already, because our listeners have started sending me these certificates. I'm talking about Ahad Wa Waad. So this is thousands who are joining UAE's new National Loyalty Initiative. Did you sign up for it or not? So initiative launched by Sahib al-Samu Sheikh Nahyan aims to strengthen social cohesion, and this is big news already. Throughout the history of the United Arab Emirates, the strong bond between the leadership and the people has remained one of the nation's greatest sources of success, stability, and sustainable development. So this is against the backdrop of Ahad Wa Waad. This is meaning, you can say, a covenant and commitment. Yeah, please correct me if I'm wrong. But not today, on Monday. Time to go now. So this is the initiative emerged as a new national milestone. It's reflecting the deep relationship that unites Emiratis and residents with their wise leadership. So running out of time, but something, if you remember, in May 2026, Sahib al-Samu Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, Minister of Tolerance and Coexistence, officially launched the Ahad Wa Waad initiative during a major national ceremony held at the Abu Dhabi the Energy Center. The event drew more than 4,800 participants from across Emirati society. And just today, somebody sent this certificate as well, because people are signing up. And I'll quickly tell you what it says. Name of the participant: in appreciation of your participation and contribution in the pledge and commitment, it's a national initiative wishing you continued progress and success. And then there is a barcode. It's the certificate of appreciation, it is titled. So go ahead if you have done it already. Well done. And with this, do good on weekend as well. If you want to relax, go ahead. If you want to be adventurous, make the most of this season with your friends and family. And even if they are not there, you have a plan. Go with it. Keep it locked to Talk 100.3. It's Neil joining you next. And some good stuff lined up for you. So you don't go anywhere and continue with TSB. I'll catch you on Monday, 11 a.m. onwards. Thank you so much for your lovely company, and thanking my little team doing big stuff. And that is Errol and Surjeet.
1: Want to your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect at funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: This is Talk 100.3.
1: Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
4: BBC News with Moira Alderson. President Putin will deliver the keynote address to his annual economic forum in St. Petersburg today, with aides insisting Russia remains as powerful as ever. Moscow is running an increasingly large budget deficit because of its invasion of Ukraine. In Russia's latest attacks, four people have been killed in a strike on a food company outside Kyiv. Romanian military helicopters are monitoring the Black Sea coast after a marine drone exploded in the port of Constanța. Some reports say that three more devices have been detected. They're of a similar type used in the war in Ukraine. Anthropic says its latest AI models are beginning to show signs of escaping human control. It's proposed a coordinated global slowdown in AI development. Mali's military government has banned the use of motorcycles outside major urban areas in an attempt to tackle armed groups. The insurgents often move across Sahel terrain quickly on bikes, launching attacks and evading security forces. Prosecutors in El Salvador have said gang leaders currently on trial will be sentenced to thousands of years in prison. Nearly 500 members of the MS-13 gang are accused of crimes including racketeering and murder. Israel says it will attack three villages north of the Litani River in southern Lebanon. Lebanese officials say overnight Israeli airstrikes killed at least seven people in separate attacks on the southern city of Tyre. The head of South Korea's National Election Commission has said he's resigning over the failure to provide an adequate number of ballot papers for this week's local elections. The shortage has been partly blamed on an unexpectedly high turnout. And Japanese officials are using drones as they continue to search for a fugitive bear which attacked and injured four people in Fukushima. The animal has eluded hunters for days, including by unlatching a window in a building. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Grey coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour. Made in Italy. Talk 100.3.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: TSB. The essential talk, sport and business across the UAE. Action as it happens with Neil Osha.
6: Hello and welcome to TSB Talk, Sport and Business. I'm Neil Osha on Talk 100.3 as we move into the weekend. जी हाँ, फ्राइडे है आज, यानी कि इसका मतलब ये है कि बस अब मस्त वाला वीकेंड आएगा, इन्जॉय करने का, रेस्ट करने का, चिल करने का इस वीकेंड पे, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड नहीं है, एक रेगुलर सा वीकेंड है. तो जल्दी वापस आना है और जल्दी वापस आके फिर से काम पे लगना है. अब ये सारी चीज़ें होंगी अगले हफ्ते, बट आज फ्राइडे को हम किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे. ऑब्वियसली वी टॉक अ लॉट अबाउट क्रिकेट बिकॉज द फोकस इज इन एंड अराउंड द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट. ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान, द थर्ड ओडीआई जो हुआ था कल, देयर इज ऑल्सो द टेस्ट मैच दैट्स गोइंग ऑन, इंग्लैंड versus New Zealand. We'll keep an eye on that as well. All of that and a lot more right here on TSB.
1: TSB, Talk Sport and Business, Talk 100.3.
6: All right, so first up, Lords mein chal raha hai ye test match. जी हाँ, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, जिसका कल हमने बताया था कि कुछ 23-24 रन बने थे एक विकेट के नुकसान पे इंग्लैंड के, और उसके बाद में बारिश पड़ गई जिसकी वजह से खेल जो है रुक गया। बट रुकने के बाद जब खेल वापस प्रिज्यूम हुआ, रात रिज्यूम हुआ, तो काइली जेमिसन ने जाके भाई कमाल कर दिया। 5 wickets in his 14 overs, 62 रन सिर्फ, मात्र 62 रन, और 5 विकेटें निकाल ली। नेथन स्मिथ ने 3 लिए हैं, विल ओरूक ने 2 ली हैं, और इस प्रकार इंग्लैंड को 140 पे ऑल आउट कर दिया। टॉप स्कोरर इस इनिंग्स के रहे हैरी ब्रुक, 56 रन बनाए थे, जबकि हैरी ब्रुक को भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही 10-12 रन पे उनका कैच ड्रॉप हुआ था, पर उसके बाद में हैरी ब्रुक ने जो है रुक के जो है आराम से बैटिंग करी, पूरी पेट भर के बैटिंग करी, 56 रन बनाए 71 गेंदों में। अच्छे पेस पर उन्होंने स्कोर किया, 78 का स्ट्राइक रेट है उनका, विच इज द फास्टेस्ट अमंग्स एनीवन एल्स हु केम आउट टू बैट। जो रूट सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए, थैंक गॉड। मेरा जो रूट के साथ अलग पंगा है उसकी बात हम करेंगे, आई एम श्योर यू नो दिस, ये दिस इज माय पेन पॉइंट। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई जो रूट को जल्दी आउट करो, टेस्ट मैचेस में जो रूट को जल्दी आउट करो। क्यों कहता हूं मैं ये, नहीं पता आपको? अगर चलो आपको पता है तो बताओ कि मैं क्यों कहता हूं कि जो रूट को टेस्ट मैचेस में जल्दी आउट करो। नहीं पता तो मैं बता दूंगा, पर आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी यार, ऐसा बिना कोशिश के मैं ऐसा छोड़ दूं ऐसा हूं नहीं मैं, है ना? तो चलो जल्दी से बताओ कि मैं क्यों कहता हूं हमेशा कि भाई जो रूट को जल्दी से टेस्ट मैच में आउट कर दो, जो रूट को ज्यादा रुकने मत दो, ठीक है ना? 0586861003 ये मेरा नंबर है, 0586861003। वाई डू आई से कि जो रूट को जल्दी से टेस्ट मैच में आउट कर दो? आप जब तक ये मैसेजेस कर रहे हो तो तक मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा आपको कि टेस्ट मैच में फिर हुआ क्या। सो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, 140 रन पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गई विथ हैरी ब्रुक टॉप स्कोरिंग विथ 56 रन्स। तो हैरी ब्रुक ने तो भाई कमाल कर दिया, पर उसके बाद में और कमाल पता है क्या हुआ? जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई, जी हाँ न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई, टॉप स्कोरर थे ग्लेन फिलिप्स, नहीं सॉरी काइल जेमिसन हिमसेल्फ, अमंग्स द बैटर्स ग्लेन फिलिप्स, बट काइल जेमिसन ने 5 विकेट भी ली और 38 रन पे नॉट आउट भी रहे। यानी कि ये पूरा का पूरा मैं कहता हूँ ना, टेस्ट मैच का फर्स्ट इनिंग्स दोनों तरफ से काइल जेमिसन के लिए ही रहा है। 38 रन ऑफ 29 डिलीवरी, स्ट्राइकिंग एट 131, भाई अलग अलग लेवल पे थे। 2 चौके 3 छक्के, उनको मुझे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई अब सब लोग आउट हो जाएंगे, फटाफट से मैं कुछ रन मार लूँ, बैट बल्ला घुमाया उन्होंने धबा धब और रन बना लिए। बट माइंड यू, काइल जेमिसन 38, ग्लेन फिलिप्स 34, ठीक है, ये मिलके होते हैं 72 रन्स, और न्यूजीलैंड ने टोटल बनाए हैं 113 रन्स। सोचो भाई, बाकी के 41 रन्स जो हैं वो यहाँ वहाँ से आए हैं, जिसमें 5 रन्स तो एक्स्ट्रास के थे, 3 बनाए टॉम लेथम ने, डेवॉन कॉनवे 1 रन, केन विलियमसन, सोचो केन बाबा 0 पे आउट हो गए, फिर रचिन रविंद्र, जिनके बारे में इतना सब कुछ कहा जा रहा है, रचिन रविंद्र ये वो, राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर का कॉम्बिनेशन, अरे क्या किया उसने, हैं 0 पे आउट हो गया, पहले बॉल पे 0 पे आउट हो गया, ओके। उसके बाद में टॉम ब्लंडल जो उनके विकेट कीपर हैं वो 4 पे, डैरल मिचेल 12 पे आउट हो गए, नेथन स्मिथ ने 15 रन बनाए, तो कुल मिलाकर ग्लेन फिलिप्स 34, नेथन स्मिथ 15 और काइल जेमिसन 38। यानी कि इनको देखो ना, इनको मिल मिला के जो है ना करीब करीब 100 रन तो यही हो गए, है ना, 99 रन तो यही हो गए। बाकी यानी कि क्या कहें, बाकियों ने क्या किया है, 1 रन विल ओरूर्क, मैट हेनरी 0, ऑब्वियसली इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो 5 रन एक्स्ट्रास में, 113 रन पे ऑल आउट। अभी इनिंग्स ब्रेक चल रही है, ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट चटका लिए, जॉश टंग ने 3 और गस एटकिंसन ने 2। यानी कि वो जो लॉर्ड्स का जो लीडर बोर्ड है ना, लॉर्ड्स पे एक ना ऑनर्स बोर्ड होता है लॉर्ड्स के मैदान में, वो ऑनर्स बोर्ड में जो जो वहाँ पे सेंचुरी लगाता है और जो जो वहाँ पे 5 विकेटें लेता है, या तो मैच में 10 विकेटें या तो इनिंग्स में 5 विकेटें लेता है, उनका नाम जाता है ऑनर्स बोर्ड पे, ठीक है। तो कल का कल ही जो है वो काइल जेमिसन का नाम चला गया 5 for 62, पर उसके पहले किसका नाम था वहाँ पे, काइल जेमिसन के बिल्कुल ऊपर किसका नाम था बताओ? नहीं पता आपको? क्या यार आपको, यानी कि कैसा है यार आप लोग? अच्छा यहाँ पे एक का मैसेज आया है कि मैं जो रूट को क्यों चाहता हूँ कि जो रूट जल्दी आउट हो जाए, महादेव का मैसेज आया है, और महादेव ने बिल्कुल सही लिखा है, महादेव ने बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड यार महादेव। यहाँ पे एक मैसेज आया है जसवंत का, जसवंत कहते हैं बिकॉज यू डोंट लाइक हिम। नहीं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो रूट से, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है जो रूट के अगेंस्ट, इट्स जस्ट दैट आई डोंट, नहीं मैं क्यों बताऊँ, आप बताओ, आपको पता होना चाहिए, मैं रेगुलरली बोलते रहता हूँ ये कि देर इज अ रीजन वाई आई डोंट वॉन्ट जो रूट टू यू नो स्कोर अ लॉट ऑफ रन, वो जल्दी आउट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी खेले इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो रूट को सबसे पहले आउट करते, बाकी सबको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो वो एजेंडा है। 0586861003 पे आप मैसेज करके बता सकते हो कि व्हाई डू आई थिंक लाइक दैट, व्हाई डू आई से सो। ओके, एंड यहाँ पर मैं ऑनर्स बोर्ड की बात कर रहा हूँ। काइल जेमिसन ने कल 5 विकेट लिए 62 पे। आज भी जो है ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट लिए हैं। उसके मतलब से क्या हुआ कि भाई दो नाम उस ऑनर्स बोर्ड में जुड़ गए हैं और वो दोनों नाम जो है बोलर्स के हैं। इसके पहले जो बोलर थे जिन्होंने 5 विकेट लेकर अपना नाम वहाँ पे डाला था बोर्ड पे, वॉज जसप्रीत सिंह बुमराह। इंग्लैंड के खिलाफ जो पिछला सीरीज था, ठीक है ना, तो समर में जो उनकी सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैच वाली, वहाँ पे लॉर्ड्स पे खेलते हुए बुमराह ने 5 विकेट लिए थे। तो भाई वो लॉर्ड्स टेस्ट की वो 5 विकेट में बुमराह का नाम है। बुमराह के बाद अब जो है आया है नाम इनका, काइल जेमिसन का, और फिर अभी नाम जाएगा ओली रॉबिन्सन का। आज अब इंग्लैंड ने बैटिंग करना शुरू किया है। एमिलियो गे और बेन डकेट आए हैं दोनों बल्लेबाजी करने। ऑब्वियसली विल कीप यू अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन दैट टेस्ट मैच एज वेल। बट आपको ये तो भाई बताना पड़ेगा मुझे अब कि व्हाई डू आई से कि जो रूट जो है को मैं क्यों चाहता हूं कि वो जल्दी आउट हो जाए। ओके, देयर आर फ्यू मोर मैसेजेस दैट हैव कम इन। देयर इज अ मैसेज फ्रॉम सलमान। सलमान ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड सलमान, आई क्वाइट लाइक इट। देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम रितेश। रितेश का भी मैसेज का जवाब सही है। हाई नील, आई नो वाई यू डोंट वॉन्ट जो रूट टू बैट फॉर लॉन्ग बिकॉज। ओके, देन देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम संदीप। संदीप का भी जवाब सही है। आई सो लव दिस यार, दिस इज सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना ध्यान से मेरा शो सुनते हो, आपको पता है कि मैं किस बात पे जो है यू नो सोचता हूँ, किस तरह सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस यार, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा, मुझे कहीं पर लगा था कि आप शायद जो है नहीं जान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे, नहीं सोच पाओगे कि मैं क्यों कहता हूँ कि जो रूट को जल्दी आउट कर दो। बाकी और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जितने जिसको जो करना है, जितनी बैटिंग करनी है, जितने सेंचुरी बनानी, बनाओ। पर मैं जो रूट के लिए बोलता हूँ भाई, इसको जल्दी आउट करो। पता है क्यों? चलो जिनको नहीं पता है उनको बताता हूँ, बाकी जिनको पता है, महादेव, संदीप, सलमान, यू नो आप लोगों ने सही जवाब दिया तो थैंक यू सो मच। द रीज़न इज दैट जो रूट उन्होंने 163 टेस्ट मैचेस खेली हैं और कुल मिलाकर 13,943 रन्स बनाए हैं। कितने? 13,943 एट एन एवरेज ऑफ 51.07। और ये जो है सिर्फ 35 साल के हैं और मुझे लगता है कि करीबन 2-2.5-3 साल तो खेल लेंगे, ठीक है ना। 3 साल तो आराम से टेस्ट मैच खेलते हैं, ज़्यादा T20 कुछ नहीं करते, आराम से ये खेलते हैं। तो कहीं पर मुझे लगता है कि ये जो है ना भाई बहुत ज़्यादा करीब है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट मैचेस में बनाए 15,921 रन्स। 200 टेस्ट मैच खेली हैं सचिन पाजी ने, ठीक है ना। 200 टेस्ट मैचेस में उन्होंने एट एन एवरेज ऑफ 53.78, बेटर एवरेज देन जो रूट ऑब्वियसली, हैज स्कोर्ड 15,921 रन्स, विच इज ओनली 1,978 रन्स अवे फ्रॉम जो रूट। और जितनी टेस्ट मैचेस ये इंग्लैंड वाले खेलते हैं ना भाई, एक साल में अपने ना कितनी टेस्ट मैच खेल जाते हैं। तो कहीं पर मुझे लगता है ना कि ये आदमी कहीं जाके सचिन पाजी का रिकॉर्ड ना तोड़ दे। एंड मैं ये नहीं चाहता भाई, मैं नहीं चाहता। क्या आपको लगता है कि जो रूट विल ब्रेक सचिन रिकॉर्ड और शुड ब्रेक सचिन रिकॉर्ड? यू कैन ऑलवेज जॉइन इन द कॉन्वर्जेशन ऑन 0586861003। दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर, 0586861003, और कॉल मी ऑन 800-81003। बोथ मेथड्स टू रीच मी आर एब्सोल्यूटली फ्री, विच मीन्स यानी कि व्हाट्सएप तो ऑब्वियसली मैसेज फ्री होता है, कॉल करना है तो 800-81003, इवन दैट नंबर इज फ्री। इट्स अ टोल फ्री नंबर, आपको उसके पैसे नहीं लगते, आपके मिनट्स नहीं कटते हैं। You can always call and tell me if you think that no, yaar, Joe Root deserves to break Sachin Tendulkar's test record, or you think no, for sanity's sake, you know, ye record Sachin Paji ka koi nahi todna chahiye. 1,978 runs ka sirf difference hai. Yani ki agar wo samjho ke 2 saal khelte hain yahan se, to 2 saal mein 1,000 test runs agar bana lete hain, to bhai ban jayega. Aur 1,000 test रन्स तो बन जाते हैं यार, जिस तरह से लोग खेल रहे हैं, जो रूट जिस तरह से खेल रहे हैं ना, मुझे कहीं पर लगता है कि भाई ये आदमी रुकने वाला है नहीं, ठीक है ना। ये आदमी जो है जिस तरह से खेल रहा है ना, कहीं ना कहीं जाके ये सचिन पाजी का रिकॉर्ड तोड़ देगा, और ऐसा अगर हुआ ना तो मुझे बड़ा बड़ा दुख होगा यार, बड़ा दुख होगा सीरियसली। क्योंकि ऐसा यानी कि क्यों, लाइक वाई वुड यू वॉन्ट टू ब्रेक सचिन पाजी से रिकॉर्ड? आई एम सॉरी बट आई एम जस्ट यू नो बींग लिटिल मीन ओवर हियर। क्योंकि अगर आप देखो ना कि पिछले मैं 2 साल में देखूं कि इन्होंने कितने रन्स बनाए हैं, तो 2024 में उन्होंने 2500 रन्स बनाए, 2400 रन्स कहाँ पे है भाई, हाँ रन्स सॉरी स्ट्राइक, ये तो नंबर ऑफ बॉल्स था ओके। तो उन्होंने 2024 में 1556 रन्स बनाए, 2025 में 805 रन्स बनाए, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो तो हो गए भाई 1978 जितने रन से, तो उससे हो गए 2026 में, इस साल में उन्होंने 167 रन बना लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेली। क्योंकि ये साल में अगर आप देखो ज़्यादा टेस्ट मैचेस हुई नहीं है, तो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हुई हैं, उसमें भी उन्होंने 167 रन बना लिए हैं भाई ने। तो ये भाई से मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं सचिन पाजी के रिकॉर्ड से, और कहीं ये जाके सचिन पाजी का रिकॉर्ड ना तोड़ दें। तो बस हमें यही डर रहता है, हम जस्ट बस यही उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा कुछ काम ना करें कि सचिन पाजी का रिकॉर्ड टूट जाए। ओके आप लोग बताओ 0586861003, डू यू थिंक दैट इट्स गुड फॉर जो रूट टू गो एंड ब्रेक सचिन्स रिकॉर्ड, और यू थिंक नो दिस रिकॉर्ड शुड स्टे विद सचिन? देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम हुसैन, ही सेज मैं पाकिस्तान से हूँ बट मुझे चाहिए कि सचिन का रिकॉर्ड कोई ना तोड़े। क्या बात है यार, ये हुई ना बात, प्यारी सी बात कर दी आपने। अनदर मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम इश्तियाक, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू ब्रेक सचिन्स रिकॉर्ड। देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम दीक्षा एंड शी सेज जो रूट विल ब्रेक सचिन रिकॉर्ड। दीक्षा आपको पता नहीं है आपने ये बात किसको कह दी है, दिल दुख गया मेरा, दर्द हो गया मुझे, नो दीक्षा नहीं करना चाहिए था, नो आई एम जस्ट किडिंग, ऑब्वियसली यू हैव द राइट टू योर ओन ओपिनियंस। दीक्षा सेइंग दैट नो शी थिंक्स दैट जो रूट विल ब्रेक सचिन रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैच रन्स, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 15971 एंड जो रूट इज 1978 रन्स बिहाइंड इट, 13943 रन्स पे है। आप लोग क्या, आपको क्या कहना है बताइए 0586861003 पे, डू यू थिंक दैट जो रूट विल बी एबल टू ब्रेक सचिन रिकॉर्ड, और यू थिंक नो ही इज वे टू फार फ्रॉम दैट, एंड 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है, इसमें इंजरी हो सकती है, इसमें कुछ हो सकता है, यू रन आउट ऑफ लव फ्रॉम द बोर्ड एंड द बोर्ड विल से अच्छा ठीक है चलो जो रूट तुम्हारी छुट्टी, अगले साल से तुम नहीं खेलोगे, ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट मैच है। मैक का मैसेज आया सचिन सचिन, क्या बात है, बात बराबर है, सचिन सचिन, सचिन जैसा कोई नहीं है कि नहीं। तो आप लोग जल्दी से मैसेज करके बताओ, क्योंकि मुझे ना बड़ा मजा आता है ये सब ऐसे नंबर्स वंबर स्टैट्स वैट्स देखने में, कि अगर हम देखें ना कि अगर जो रूट की बात करें तो जो रूट ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन द 13 ईयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट दैट ही इज प्लेड ही स्कोर्ड 1926 रन्स, ठीक है 22 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 22 टेस्ट मैचेस में 1926 और 52 के एवरेज से रन्स बनाए हैं उन्होंने, कितने 52 के एवरेज से, 52 की एवरेज से उन्होंने रन्स बनाए हैं। तो यानी कि भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको रन्स बनाने में मज़ा तो आता है, 6 सेंचुरीज लगाई है उन्होंने, 9.5 सेंचुरीज भी लगाई है, तो उनको मज़ा तो आता है भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ रन्स बनाने का को। लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि जो भी हो जाए, जितने भी आपने बनाए रन्स रिकॉर्ड जो भी बनाए भाई, सचिन पाजी का रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए, यानी कि लेट हिम मेक 15920 रन्स एंड नॉट गेट टू 15921, नॉट ब्रेक दैट रिकॉर्ड। दैट इज माई थॉट, यू कैन ऑलवेज शेयर योर थॉट्स। मीनवाइल वी विल हैव अ क्विक चेक ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द टेस्ट मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। England has come out to bat again after getting New Zealand all out on just 113 runs with Ollie Robinson picking up 5 wickets. England batting now, Ben Duckett is on 4 and England is on 4 after 3 overs. Batting to come, Jacob Bethel, Joe Root, Harry Brook, Jamie Smith, Ben Stokes, Gus Atkinson, obviously uske baad mein Ollie Robinson, Josh Tung and Shoaib Bashir hain. But haan, agar aap samajh rahe ho ke bhai ये टेस्ट मैच में क्या हो सकता है, तो ओवरकास्ट कंडीशन है, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच होगा ये, अभी भी कंडीशंस जो हैं ऐसे लग रहे हैं बादल ऊपर छाए हुए हैं, तो ये मैच थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दी ख़त्म हो सकता है। एंड अगर जल्दी ख़त्म होगा इसका मतलब ये कि भाई फिर से हमारी जान में जान आएगी और हम खुश होंगे कि जो रूट जो है वो सचिन के रिकॉर्ड से अभी भी दूर हैं। एजेंडा है भाई मेरा ये, तो यू कैन ऑलवेज जॉइन इन दैट एजेंडा बाय मैसेजिंग मी ऑन 0586861003, एंड व्हाइल यू डू दैट विल टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक राइट हियर ऑन टीएसबी टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस। आई एम नील ओझा, एंड इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग, We are more than happy to speak. At aaj shaam mein, we will also be bringing in someone from the sporting fraternity who does something absolutely amazing within the sports world. Main hamesha aapse kehta hu na ki sports mein alag alag careers hote hain. Sirf aisa nahi hota hai ki aapne athlete hi hona hai, coach hi hona hota hai ya commentator hi banna hota hai. Uske alawa bhi bahut sari cheeze hoti hai. So we will dive deep into a different segment of a career as far as sport is concerned later today, this evening. But filhal ke liye, time to take a quick short break. I'm Neil Oja. I'll be here on Talk 100.3.
1: TSB, talking sports, business and more. Talk 100.3.
3: This is Talk 100.3.
1: The Journal on TSB. The latest share market and stock market news and updates on Talk 100.3.
6: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. Let's have a quick check on what's happening in the financial world. Dubai Financial Market General Index closing 0.86% higher today. Gulf Nav went up by 8.04%. MR up by 0.17%. Emirates NBD up by 0.75%. Diva went up by 1.55%. ये मुझे हमेशा अच्छा लगता है. Diva के stocks हैं ना मैंने observe किए. महीने के पहले हफ्ते में देखो हमेशा थोड़े से ऊपर जाते हैं. क्यों? क्योंकि bill भरा होता है भाई सबने. सब bill टाइम से बिल भरोगे तो ये स्टॉक का ऊपर जाएगा ही जाएगा. नहीं, दिस इज जस्ट माय रैंडम लॉजिक. आई डोंट नो इफ दैट इज द करेक्ट वन, बट या ये मेरी सोच है. दुबई टैक्सी कंपनी आल्सो अप बाय 2.81%. सम ऑफ द स्टॉक्स दैट वेंट डाउन, नेशनल इंटरनेशनल होल्डिंग डाउन बाय 4.87% एंड तबरीज द नेशनल सेंट्रल कूलिंग डाउन बाय 2.27% इन द डे स्ट्रेट. मैं हूं नील एंड दिस इज टीएसबी टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस ऑन टॉक 100.3. हैप्पी टू हियर योर थॉट्स, हैप्पी टू हियर व्हाट यू फील अबाउट everything that's happening in and around your life. क्या plans हैं इस weekend के, आपको बताना होगा जरूर, ताकि हम जो है आपके साथ रहें और देखें कि भाई हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इस weekend पे.
1: This is TSB, the home of talk, sport and business. This is Talk 100.3. TSB, business advice, tips and resources. Talk 100.3.
5: I'm Maura Fogarty with your business update. One of the world's largest artificial intelligence developers, Anthropic, is calling for the industry to consider slowing down the pace of development to allow time to weigh up the implications on society as a whole. Anthropic has revealed that its AI models are now developing their own computer code with little human input. Anthropic calls this recursive self-improvement and says the AI is currently writing around 80% of its own code. If that's allowed to hit 100%, Anthropic warns humans could lose oversight of what it's doing. Jack Clark is one of Anthropic's co-founders.
7: You want the option to be able to take your foot off the gas and put your foot on the brake, right? Right now, it's like the AI industry has a gas pedal, but it doesn't have a brake pedal in the car. And what we're saying is we want to do some of the work required to build that brake pedal so we in the world have an option.
5: The United States is imposing new economic sanctions on the Cuban president and some of his immediate family as Washington ramps up pressure on the island. Miguel Diaz-Canel called the measures aggressive and perverse, adding that they reinforce the blockade and the conflict between the two countries. The co-founder and chairman of Netflix is stepping down from the board after leading the company for 29 years. Reed Hastings transformed Netflix from a mail-order DVD rental service to the world's biggest streaming giant, rewriting the rules of global television in the process. And the Monaco Grand Prix is about to get underway, transforming the tiny principality streets into a racetrack where Formula One drivers do battle over 78 laps. During race weekend, Monaco's five-star hotel prices can surge up to $58,000 per night. And that's your business update.
3: Talk 100.3.
6: Hello and welcome to TSB Talk, Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. Conversations about what's happening in the world of sport. Obviously, yes, taking everyone's paramount interest is England versus New Zealand. The first test match being played at Lord's. And ek kahin par ek conversation ye bhi hui thi ki jis tarha se England mein test playing centers hain. Hai na, England mein agar aap dekho to 5-6-7 jagahon pe test matches khelie jaati hai. Aisa nahi ki har शहर में, यू नो, जहाँ पे ग्राउंड है क्रिकेट का, वहाँ पे टेस्ट मैच खेल लो। तो वहीं पर वैसे ही जो है, मेरे ख्याल से विराट कोहली ने ये कहा था कि इंडिया शुड ऑल्सो हैव टेस्ट सेंटर्स, यानी कि इन ही ग्राउंड्स पे जो है ना टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, इनके अलावा और कहीं टेस्ट मैचेस नहीं खेले जाएंगे। एंड व्हाई डिड ही से सो इज बिकॉज समटाइम्स यू गो टू वेन्यूज जहाँ का आपको ना कंडीशंस पता है, ना आपको सर्फेसिस पता है, इवन एज होम टीम यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एन इनसाइट कि आप असम में कहीं पर खेलने चले गए। एंड आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू नो एनी ग्राउंड पर से, बट इज दैट अ ग्राउंड वेयर यू नो इन टीम इंडिया प्लेज अ लॉट ऑफ क्रिकेट? द आंसर इज नो। एंड इफ दैट इज अ नो, देन दे डेफिनेटली डू नॉट नो वॉट surface is there, how the surface is going to behave, what is the weather condition, कैसे weather वहाँ पर change होता है, और उस चक्कर में जो है आपका जो home advantage है वो चला जाता है। अगर आप Australia में देखो, ठीक है, तो आप अगर Australia cricket में देखो तो Perth, Sydney, Melbourne, ये आपको पता है कि भाई यहाँ पर test matches होंगे, right? अब उसी तरह से इंग्लैंड में देखो, आपको पता है भाई लॉर्ड्स पे होगा, ओवल में होगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है सारा प्लान करते हैं कि आपको पता है कि भाई आप अगर हमारे घर में आओगे तो हमें पता है कि हमारी कंडीशंस क्या है, और हम चाहे टॉस हार जाए फिर भी आपको हरा सकते हैं। तो वो होम एडवांटेज जो है ना इंडिया के हाथ से चला जाता है, बिकॉज इंडिया बींग सच अ ह्यूज कंट्री एंड इतने सारे ग्राउंड्स हैं इंडिया में, और सबको भाई ऐसा होता है कि भाई हम भी टेस्ट मैच होस्ट करें। बट शुडंट इट बी इन अ वे वेयर यू हैव टेस्ट सेंटर्स लाइक से मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, और अहमदाबाद, हाँ, पांच टेस्ट मैचेस ज़्यादा तो कोई नहीं खेलता है, पांच टेस्ट की सीरीज मैक्सिमम होती है, आपके पांच सेंटर्स हो गए ये, हैं, मुंबई में वानखेड़े में खिला लो, बैंगलोर में चिन्नस्वामी में खिला लो, ठीक है, रन्स ही रन्स पड़ेंगे वहाँ पे, पूरा दिन बैटिंग होती रहेगी, टेस्ट मैच शायद ड्रॉ भी हो जाए, ओके, रन्स के चक्कर में चेन्नई में खिला लो, चिदंबरम स्टेडियम में, ठीक है, कोलकाता ईडन गार्डन्स में खिला लो, और आपके पास नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खिला लो, और दिल्ली में खिला लो अरुण जेटली स्टेडियम में। ये छः से ज़्यादा तो आपको क्या ही चाहिए, आई मीन हैदराबाद भी है फिर आप बोलोगे, बट ये छः स्टेडियम जो हैं आपके, अगर तीन मैच का सीरीज हो तो फिर आपने तीन मैच जो अलग, यू नो, इन छः में से कहीं पर तीन मैचेस खिला लिए। आपके अगर पांच मैच का सीरीज है तो भी जो है आप पांच इनमें से मिक्स करके कहीं भी खिला सकते हो। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया व्हाट वाज प्रपोज्ड बैक देन? बिकॉज इन माय ओपिनियन आई थिंक दैट डज मेक सेंस। येस, क्रिकेट हैज़ टू बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट इन एट वेरियस प्लेसेस, बट समवेयर दैट शुड बी लिमिटेड टू लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, T20 ODI, जहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कंडीशंस का, ठीक है ना, टेस्ट में भाई बड़ा फर्क पड़ता है। और अगर होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस है, तो भाई आपको उसका एडवांटेज उठाना चाहिए, ना कि आप पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज हाथ से गवा दो बिकॉज आपको कंडीशंस ही समझ में नहीं आए, अपने होम कंडीशंस समझ नहीं आए, है कि नहीं? What are your thoughts? I would love to hear your thoughts. 0586861003. You can very well say that's my WhatsApp number, by the way. 0586861003. You can very well say that नहीं नील, ऐसा नहीं हो सकता है. Test cricket has to go to, you know, every part of the country. फिर आप रायपुर में भी खिला लो, रांची में भी खिला लो, you know, आप कहीं पर भी, जहाँ आप शिमला में खिला लो, आप धर्मशाला में जाके टेस्ट मैच खिला लो, क्यों नहीं? आई मीन आई एम हियर टू लिसन टू योर थॉट्स, ठीक है ना? सो नथिंग इज राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट एन ओपिनियन कि इंडिया में कितने टेस्ट वेन्यूज हैं और कितने होने चाहिए, कि कितने पे आपको लगता है कि भाई ये तो ज़्यादा नहीं हो गया, कि इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप लोग बताओ। 0586861003, आई एम वेटिंग टू हियर योर थॉट्स कि कितने ऐसा टेस्ट सेंटर्स होने चाहिए कि बस इन्हीं टेस्ट मैच, इन्हीं जगहों पे जो है ना टेस्ट मैचेस हों, इनके अलावा ना हो। अब मैं बताता हूँ आपको इंडिया में हैं कितने, ठीक है। VDCA यानी कि विशाखापट्टनम, आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन एंड विशाखापट्टनम क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम इन दिल्ली, बाराबती स्टेडियम, दिस इज इन ओडिशा, ओडिशा में कटक में, ठीक है। बॉम्बे जिमखाना का जो स्टेडियम है वो भी जो है टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे टेस्ट, ब्रेबॉन स्टेडियम भी जो है वो तो ऑब्वियसली है ही, जहाँ पे खेला जा सकता है, ऐसा नहीं कि खेला जाता है बट खेला जा सकता है। ईडन गार्डन से एकाना है, देन देयर इज ग्रीन पार्क इन कानपुर, फिर गांधी स्टेडियम जलंधर में. ओके, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अभी कोई रिसेंटली टेस्ट मैच है, बट ग्रीन पार्क स्टेडियम ऑब्वियसली कानपुर में है. हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ का अपना ये क्या कहते हैं धर्मशाला वाला, फिर होलकर स्टेडियम मध्य प्रदेश में इंदौर में है, फिर IAS बिंद्रा मोहाली, JSCA ये झारखंड का जो स्टेडियम है रांची में जो है वो हो गया, फिर KD सिंह स्टेडियम, ये एक सेकेंड यार अननोन नंबर से मुझे फ़ोन आ रहा है अभी, मैं कैसे शो के बीच में उठाऊं. ठीक है, KD सिंह स्टेडियम जो है वो लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में, लखनऊ यूनिवर्सिटी का ग्राउंड MH चिदम्बरम स्टेडियम चिन्नस्वामी, फिर MSCA का जो ग्राउंड है वो फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में, ये भी एक टेस्ट वेन्यू है, राजकोट में टेस्ट मैचेस होते हैं, फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में भी एक है. ठीक है ना, उसके बाद में सरदार पटेल स्टेडियम है, ये मोटेरा का जो ग्राउंड है उसको कहा जाता था, वो अलग ग्राउंड है एक, बेसिकली सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान का, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम, और ऑब्वियसली वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में. तो आप देखिए कि इतने सारे तो ऑफिशियल टेस्ट ग्राउंड्स हैं इंडिया में कहीं पर, मुझे ऐसा लगता है. ओके, एंड यू मे बी एब्सोल्युटली इन सिंक विथ मी, और यू कुड प्रॉब्ली से नहीं भाई ये तो आप गलत बोल रहे हो. ठीक है, कि अरुण जेटली स्टेडियम इन दिल्ली, वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, उसके बाद में ईडन गार्डन्स इन कोलकाता, फिर चिन्नस्वामी स्टेडियम इन बैंगलोर, एंड MH चिदम्बरम स्टेडियम इन चेन्नई. ये 6 स्टेडियम्स हैं. ठीक है ना, इन 6 स्टेडियम्स में टेस्ट क्रिकेट रखो, बाकी सब जगह पे T20 खिलाओ, ODI खिलाओ, जो करना है करो. मैसेजेस हैव कम इन ऑलरेडी, देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम प्रकाश. प्रकाश कहते हैं कि अग्री विथ यू, दिस विल गिव प्रॉपर होम ग्राउंड एडवांटेज एंड इंडिया टीम कैन ट्रेन एट दीज वेन्यूज बिफोर टेस्ट मैचेस आर बिफोर अ टेस्ट सीरीज. परफेक्ट, दिस इज एग्जैक्टली द थॉट, दिस इज एग्जैक्टली माई यू नो इंटेंशन ऑफ शेयरिंग दिस आइडिया, कि भाई ऐसी जगहों पर ही टेस्ट मैचेस होने चाहिए, 4-5-6 जगहों पे जहाँ पे टेस्ट मैच का सेटअप अच्छा हो, एंड देन फिर उसके साथ ही साथ जो है ना टीम भी वहाँ पर ही प्रिपेयर करे, प्लान करे. इवन हाय नील, इवन इफ वी फिक्स टेस्ट वेन्यूज वी हैव मिस्ड द टैक्टिक्स ऑफ हैविंग स्पिनिंग ट्रैक्स एंड क्वालिटी स्पिनर्स लाइक बिफोर. यू आर राइट संदीप, कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ इंडियन स्पिनर्स हैव forgotten the idea of going the slow classical spin way. अभी जितने भी spinners हैं sorry, ये वो रेडियो है, लाइव है, छींक आती है तो फिर छींक देंगे हम. ठीक है, जितने भी spinners हैं आप देखो, काफ़ी सारे उनमें से they actually love to bowl the quicker ones, तेज गेंद डालने की कोशिश करते हैं. Where is the classical good old air, हवा देना बॉल को, थोड़ा सा ऐसा लूप देना बॉल को, ये सारी चीज़ें कहीं पर मुझे लगता है मिसिंग हो गई है. उस वजह से यू नो स्पिनर्स एंड यू नो एंड स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट इट डज नॉट लुक लाइक दैट इंडिया इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दैट. प्लस इंडिया नाउ डज नॉट प्रिपेयर सैंड बॉल्स, यू नो, जो पहले हुआ करता था कि एब्सोल्युटली स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स के, यानी कि तीसरे चौथे दिन पर तो वहाँ पर अगर आप बॉल डालो तो ऐसा मिट्टी उड़ना शुरू हो जाएगी. तो वो मुझे नहीं लगता है कि अब होता है. नाउ दे प्रिपेयरिंग ट्रू ट्रैक्स, जिसकी वजह से एक फ़ायदा हुआ है कि इंडिया स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड पेस बॉलर्स. यू नो ट्रू ट्रैक्स बनते हैं जहाँ पर बॉल को मूवमेंट मिलती है, ऑफ द डेक मूवमेंट मिलती है, तो बाउंस मिलता है. तो उसकी वजह से इंडिया के बॉलर्स देखो तो इंडिया स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड फास्ट बॉलर्स इन द लास्ट 5-6-7-8 ईयर्स. इंडियन बैटर्स हैव स्टार्टेड बैटिंग वेल अगेंस्ट पेस बॉलिंग. 150 पे भी आ जाए, बाउंसर्स भी आ जाए, इंडियन बैटर्स को डर नहीं लगता. तो ये सारी चीज़ें हुई हैं बिकॉज इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द हैवी स्पिन डिपेंडेंसी. बट ऑन द फ्लिप साइड, बिकॉज इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम दैट, इंडिया में न्यूजीलैंड का स्पिनर आके 10 विकेट लेके जाता है भाई एक इनिंग्स में, है कि नहीं? कौन था वो स्पिनर पता है आपको, जिसने इंडिया में आके इंडिया के अगेंस्ट 10 विकेट ली थी एक ही इनिंग्स में? अनिल कुंबले ने वो किया है, जिम लेकर ने किया है, बट दिस गाय इज अ थर्ड बोलर, द ओनली थर्ड बोलर टू डू दिस. एक ही इनिंग्स में 10 विकेट लिए, अ स्पिनर फ्रॉम न्यूजीलैंड. 0586861003, इफ यू नो द आंसर सेंड इन योर आंसर्स, एंड टिल दैट टाइम आई विल बी हियर रीडिंग योर मैसेजेस, वेटिंग फॉर यू टू गेट इट राइट. एंड इफ यू गेट इट राइट भाई, जबरदस्त, आपके लिए तालियां बजवाऊंगा, आपका नाम भी लूंगा मैं रेडियो पे, क्या भाई इन्होंने सही जवाब दिया. गलत दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो लिख के भेजो, आई डोंट नो, नो प्रॉब्लम, कोई शर्म नहीं है, एंड फ्री के मैसेजेस हैं तो बात करो. ठीक है ना, एंड करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन था वो जिसने एक इनिंग्स में, टेस्ट मैच के एक इनिंग्स में 10 विकेटें चटकाई थी. द ओनली थर्ड बॉलर टू डू दैट. फर्स्ट वन वॉज जिम लेकर, सेकेंड वॉज अनिल कुंबले, एंड द थर्ड वन ये बॉलर कौन थे ये. 0586861003 माई व्हाट्सएप नंबर. सेंड इन योर मैसेजेस विद योर नेम राइट हियर ऑन TSB. आई एम नील ओझा.
8: This is Fan Network News from the BBC.
4: BBC News with Moira Alderson. President Putin will deliver the keynote address to his annual economic forum in St. Petersburg today, with aides insisting Russia remains as powerful as ever. Moscow is running an increasingly large budget deficit because of its

0: insurersmarket.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: Talk 100.3.
2: All right, Lords mein chal raha hai ye test match. जी हाँ, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, जिसका कल हमने बताया था कि कुछ 23-24 रन बने थे एक विकेट के नुकसान पे इंग्लैंड के, और उसके बाद में बारिश पड़ गई जिसके वजह से खेल जो है रुक गया। बट रुकने के बाद जब खेल वापस रिज्यूम हुआ तो काइली जेमिसन ने जाके भाई कमाल कर दिया। 5 wickets in his 14 overs, 62 रन सिर्फ, मात्र 62 रन, और 5 विकेटें निकाल ली। नेथन स्मिथ ने 3 ली हैं, विल ओरूक ने 2 ली हैं, और इस प्रकार इंग्लैंड को 140 पे ऑल आउट कर दिया। टॉप स्कोरर इस इनिंग्स के रहे हैरी ब्रुक, 56 रन बनाए थे, जबकि हैरी ब्रुक को भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही 10-12 रन पे उनका कैच ड्रॉप हुआ था, पर उसके बाद में हैरी ब्रुक ने जो है रुक के जो है आराम से बैटिंग करी, पूरी पेट भर के बैटिंग करी, 56 रन बनाए 71 गेंदों में। अच्छे पेस पर उन्होंने स्कोर किया, 78 का स्ट्राइक रेट है उनका, विच इज द फास्टेस्ट अमंगस्ट एनीवन एल्स हु केम आउट टू बैट। जो रूट सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए, थैंक गॉड। मेरा जो रूट के साथ अलग पंगा है उसकी बात हम करेंगे, आई एम श्योर यू नो दिस, ये दिस इज माई पेन पॉइंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जो रूट को जल्दी आउट करो, टेस्ट मैचेस में जो रूट को जल्दी आउट करो। क्यों कहता हूँ मैं ये, नहीं पता आपको? अगर चलो आपको पता है तो बताओ कि मैं क्यों कहता हूँ कि जो रूट को टेस्ट मैचेस में जल्दी आउट करो। नहीं पता तो मैं बता दूंगा, पर आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी यार, ऐसा बिना कोशिश के मैं ऐसा छोड़ दूँ ऐसा हूँ नहीं मैं, है ना? तो चलो जल्दी से बताओ कि मैं क्यों कहता हूँ हमेशा कि भाई जो रूट को जल्दी से टेस्ट मैच में आउट कर दो, जो रूट को ज़्यादा रुकने मत दो, ठीक है ना? 0586861003 ये मेरा नंबर है, 0586861003। वाई डू आई से कि जो रूट को जल्दी से टेस्ट मैच में आउट कर दो? आप जब तक ये मैसेजेस कर रहे हो तब तक मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा आपको कि टेस्ट मैच में फिर हुआ क्या। सो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड 140 रन पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गई, विथ हैरी ब्रुक टॉप स्कोरिंग विथ 56 रन। तो हैरी ब्रुक ने तो भाई कमाल कर दिया, पर उसके बाद में और कमाल पता है क्या हुआ? जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई, जी हाँ, न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई, टॉप स्कोरर थे ग्लेन फिलिप्स, नहीं सॉरी, काइल जेमिसन हिमसेल्फ अमंग्स द बैटर्स ग्लेन फिलिप्स, बट काइल जेमिसन ने 5 विकेट भी ली और 38 रन पे नॉट आउट भी रहे। यानी कि ये पूरा का पूरा मैं कहता हूँ ना, टेस्ट मैच का फर्स्ट इनिंग्स दोनों तरफ से काइल जेमिसन के लिए ही रहा है। 38 रन ऑफ 29 डिलीवरी, स्ट्राइकिंग एट 131, भाई अलग अलग लेवल पे थे, 2 चौके 3 छक्के। उनको मुझे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई अब सब लोग आउट जाएंगे, फटाफट से मैं कुछ रन मार लूँ, बैट बल्ला घुमाया उन्होंने धबाधब और रन बना लिए। बट माइंड यू, काइल जेमिसन 38, ग्लेन फिलिप्स 34, ठीक है, ये मिलके होते हैं 72 रन्स, और न्यूजीलैंड ने टोटल बनाए हैं 113 रन्स। सोचो भाई, बाकी के 41 रन्स जो हैं वो यहाँ वहाँ से आए हैं, जिसमें 5 रन्स तो एक्स्ट्रास के थे, 3 बनाए टॉम लेथम ने, डेवॉन कॉनवे 1 रन, केन विलियमसन, सोचो केन बाबा 0 पे आउट हो गए, फिर रचिन रविंद्र जिनके बारे में इतना सब कुछ कहा जा रहा है, रचिन रविंद्र ये वो, राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर का कॉम्बिनेशन, भाई क्या किया उसने, है 0 पे आउट हो गया, पहले बॉल पे 0 पे आउट हो गया, ओके। उसके बाद में टॉम ब्लंडल जो उनके विकेट कीपर हैं वो 4 पे, डैरल मिचेल 12 पे आउट हो गए, नेथन स्मिथ ने 15 रन बनाए, तो कुल मिलाकर ग्लेन फिलिप्स 34, नेथन स्मिथ 15 और काइल जेमिसन 38। यानी कि इनको देखो ना, इनको मिल मिला के जो है ना करीब करीब 100 रन तो यही हो गए, है ना, 99 रन तो यही हो गए, बाकी यानी कि क्या कहें, बाकियों ने क्या किया है, 1 रन विलो रूर, मैट हेनरी 0, ऑब्वियसली इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, 5 रन एक्स्ट्रास में, 113 रन पे ऑल आउट। अभी इनिंग्स ब्रेक चल रही है, ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट चटका लिए, जॉश टंग ने 3 और गस एटकिंसन ने 2। यानी कि वो जो लॉर्ड्स का जो लीडर बोर्ड है ना, लॉर्ड्स पे एक ना ऑनर्स बोर्ड होता है लॉर्ड्स के मैदान में, वो ऑनर्स बोर्ड में जो जो वहाँ पे सेंचुरी लगाता है और जो जो वहाँ पे 5 विकेटें लेता है, या तो मैच में 10 विकेटें या तो इनिंग्स में 5 विकेटें लेता है, उनका नाम जाता है ऑनर्स बोर्ड पे, ठीक है। तो कल का कल ही जो है वो काइल जेमिसन का नाम चला गया 5 for 62, पर उसके पहले किसका नाम था वहां पे, काइल जेमिसन के बिल्कुल ऊपर किसका नाम था बताओ? नहीं पता आपको? क्या यार आपको, यानी कि कैसा है यार आप लोग? अच्छा, यहाँ पे एक का मैसेज आया है कि मैं जो रूट को क्यों चाहता हूँ कि जो रूट जल्दी आउट हो जाए, महादेव का मैसेज आया है, और महादेव ने बिल्कुल सही लिखा है, महादेव ने बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड यार महादेव। यहाँ पे एक मैसेज आया है जसवंत का, जसवंत कहते हैं बिकॉज यू डोंट लाइक हिम, नहीं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो रूट से, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है जो रूट के अगेंस्ट। इट्स जस्ट दैट आई डोंट, नहीं मैं क्यों बताऊँ, आप बताओ, आपको पता होना चाहिए। मैं रेगुलरली बोलते रहता हूँ ये कि देर इज अ रीजन वाई आई डोंट वॉन्ट जो रूट टू यू नो स्कोर अ लॉट ऑफ रन, वो जल्दी आउट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी खेले इंग्लैंड के अगेंस्ट जो रूट सबसे पहले आउट करते, बाकी सबको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो वो एजेंडा है। 0586861003 पे आप मैसेज करके बता सकते हो कि व्हाई डू आई थिंक लाइक दैट, व्हाई डू आई से सो। ओके, एंड यहां पर मैं ऑनर्स बोर्ड की बात कर रहा हूं। काइल जेमिसन ने कल 5 विकेट लिए 62 पे। आज भी जो है ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट लिए हैं। उसके मतलब से क्या हुआ कि भाई दो नाम उस ऑनर्स बोर्ड में जुड़ गए हैं और वो दोनों नाम जो है बॉलर्स के हैं। इसके पहले जो बॉलर थे जिन्होंने 5 विकेट लेकर अपना नाम वहाँ पे डाला था बोर्ड पे, वॉज जसप्रीत सिंह बुमराह, इंग्लैंड के खिलाफ जो पिछला सीरीज था, ठीक है ना। तो समर में जो उनकी सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैच वाली, वहाँ पे लॉर्ड्स पे खेलते हुए

सीरीज था, ठीक है ना, तो समर में जो उनकी सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैच वाली, वहाँ पे लॉर्ड्स पे खेलते हुए बुमराह ने 5 विकेट लिए थे। तो भाई वो लॉर्ड्स टेस्ट की वो 5 विकेट में बुमराह का नाम है। बुमराह के बाद अब जो है आया है नाम इनका, काइल जेमिसन का, और फिर अभी नाम जाएगा ओली रॉबिन्सन का आज। बट आपको ये तो भाई बताना पड़ेगा मुझे अब कि वाई डू आई से के जो रूट जो है को मैं क्यों चाहता हूं कि वो जल्दी आउट हो जाए। ओके, देयर आर फ्यू मोर मैसेजेस दैट हैव कम इन। देयर इज अ मैसेज फ्रॉम सलमान। सलमान ने भी सही जवाब दिया है, वेरी गुड सलमान, आई क्वाइट लाइक इट। देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम रितेश। रितेश का भी मैसेज का जवाब सही है। हाय नील, आई नो व्हाई यू डोंट वांट जो रूट टू बैट फॉर लॉन्ग बिकॉज। ओके, देन देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम संदीप। संदीप का भी जवाब सही है। आई सो लव दिस यार, दिस इज सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना ध्यान से मेरा शो सुनते हो, आपको पता है कि मैं किस बात पे जो है यू नो सोचता हूँ, किस तरह सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस यार, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा, मुझे कहीं पर लगा था कि आप शायद जो है नहीं जान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे, नहीं सोच पाओगे कि मैं क्यों कहता हूँ कि जो रूट को जल्दी आउट कर दो। बाकी और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जितने जिसको जो करना है, जितनी बैटिंग करनी है, जितने सेंचुरी बनानी बनाओ, पर मैं जो रूट के लिए बोलता हूँ भाई इसको जल्दी आउट करो। पता है क्यों? चलो जिनको नहीं पता है उनको बताता हूँ, बाकी जिनको पता है महादेव, संदीप, सलमान, यू नो आप लोगों ने सही जवाब दिया तो थैंक यू सो मच। द रीज़न इज दैट जो रूट उन्होंने 163 टेस्ट मैचेस खेली हैं और कुल मिलाकर 13,943 रन बनाए। कितने? 13,943 एट एन एवरेज ऑफ 51.07। और ये जो है सिर्फ 35 साल के हैं और मुझे लगता है कि करीबन 2-3 साल तो खेल लेंगे, ठीक है ना, 3 साल तो आराम से टेस्ट मैच खेलते हैं, ज़्यादा T20 कुछ नहीं करते, आराम से ये खेलते हैं। तो कहीं पर मुझे लगता है कि ये जो है ना भाई बहुत ज़्यादा करीब है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट मैचेस में बनाए 15,921 रन्स। 200 टेस्ट मैच खेली हैं सचिन पाजी ने, ठीक है ना, 200 टेस्ट मैचेस में उन्होंने एट एन एवरेज ऑफ 53.78, बेटर एवरेज देन जो रूट ऑब्वियसली, हैज स्कोर्ड 15,921 रन्स, विच इज ओनली 1,978 रन्स अवे फ्रॉम जो रूट। और जितनी टेस्ट मैचेस ये इंग्लैंड वाले खेलते हैं ना भाई, एक साल में अपने ना कितनी टेस्ट मैच खेल जाते हैं, तो कहीं पर मुझे लगता है ना कि ये आदमी कहीं जाके सचिन पाजी का रिकॉर्ड ना तोड़ दे। एंड मैं ये नहीं चाहता भाई, मैं नहीं चाहता। क्या आपको लगता है कि जो रूट विल ब्रेक सचिन रिकॉर्ड और शुड ब्रेक सचिन रिकॉर्ड? यू कैन ऑलवेज जॉइन इन द कॉन्वर्जेशन ऑन 0586861003, दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर 0586861003, और कॉल मी ऑन 800-81003। बोथ मेथड्स टू रीच मी आर एब्सोल्युटली फ्री, विच मीन्स यानी कि व्हाट्सएप पे तो ऑब्वियसली मैसेज फ्री होता है, कॉल करना है तो 800-81003, इवन दैट नंबर इज फ्री, इट्स अ टोल फ्री नंबर, आपको उसके पैसे नहीं लगते, आपके मिनट्स नहीं कटते। यू कैन ऑलवेज कॉल एंड टेल मी इफ यू थिंक दैट नो यार जो रूट डिजर्व टू ब्रेक सचिन तेंदुलकर टेस्ट रिकॉर्ड, और यू थिंक नो फॉर सैनिटी सेक यू नो ये रिकॉर्ड सचिन पाजी का कोई नहीं तोड़ना चाहिए। 1,978 रन्स का सिर्फ डिफरेंस है, यानी कि अगर वो समझो कि 2 साल खेलते हैं यहाँ से, तो 2 साल में 1,000 टेस्ट रन्स अगर बना लेते हैं तो भाई बन जाएगा, और 1,000 टेस्ट रन्स तो बन जाते हैं यार जिस तरह से लोग खेल रहे हैं, जो रूट जिस तरह से खेल रहे हैं ना, मुझे कहीं पर लगता है कि भाई ये आदमी रुकने वाला है नहीं, ठीक है ना, ये आदमी जो है जिस तरह से खेल रहा है ना कहीं जाके ये सचिन पाजी का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और ऐसा अगर हुआ ना तो मुझे बड़ा बड़ा दुख होगा यार, बड़ा दुख होगा सीरियसली, क्योंकि ऐसा यानी कि क्यों, लाइक व्हाई वुड यू वांट टू ब्रेक सचिन पाजी से रिकॉर्ड? आई एम सॉरी बट आई एम जस्ट यू नो बीइंग अ लिटिल मीन ओवर हियर, क्योंकि अगर आप देखो ना कि पिछले मैं 2 साल में देखूं कि इन्होंने कितने रन्स बनाए हैं, तो 2024 में उन्होंने 2,500 रन्स बनाए, 2,400 रन्स कहाँ पे है भाई, हाँ रन्स, सॉरी स्ट्राइक, ये तो नंबर ऑफ बॉल्स था, ओके। तो उन्होंने 2024 में 1,556 रन्स बनाए, 2025 में 805 रन्स बनाए, ठीक है ना, तो अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो तो हो गए भाई
1978 जितने रन से तो उससे हो गए, 2026 में इस साल में

0: उन्होंने 167 रन बना लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, सिर्फ दो टेस्ट मैचेस खेली, क्योंकि ये साल में अगर आप देखो ज़्यादा टेस्ट मैचेस हुई नहीं है, तो सिर्फ दो टेस्ट मैचेस हुई हैं, उसमें भी उन्होंने 167 रन बना लिए हैं भाई ने। तो ये भाई से मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं सचिन पाजी के रिकॉर्ड से, और कहीं ये जाके सचिन पाजी का रिकॉर्ड ना तोड़ दें। तो बस हमें यही डर रहता है, हम जस्ट बस यही उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा कुछ काम ना करें कि सचिन पाजी का रिकॉर्ड टूट जाए। ओके, आप लोग बताओ 0586861003, डू यू थिंक दैट इट्स गुड फॉर जो रूट टू गो एंड ब्रेक सचिन रिकॉर्ड, और यू थिंक नो दिस रिकॉर्ड शुड स्टे विद सचिन। देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम हुसैन, ही सेज मैं पाकिस्तान से हूँ बट मुझे चाहिए कि सचिन का रिकॉर्ड कोई ना तोड़े। क्या बात है यार, ये हुई ना बात, प्यारी सी बात कर दी आपने। अनदर मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम इश्तियाक, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू ब्रेक सचिन रिकॉर्ड। देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम दीक्षा and she says जो रूट विल ब्रेक सचिन्स रिकॉर्ड। दीक्षा आपको पता नहीं है आपने ये बात किसको कह दी है, दिल दुख गया मेरा, दर्द हो गया मुझे, नो दीक्षा नहीं करना चाहिए था, नो आई एम जस्ट किडिंग, ऑब्वियसली यू हैव द राइट टू योर ओन ओपिनियंस। दीक्षा सेइंग दैट नो शी थिंक्स दैट जो रूट विल ब्रेक सचिन्स रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैच रन्स, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 15,971 एंड जो रूट इज 1,978 रन्स बिहाइंड इट, 13,943 रन्स पे हैं। आप लोग क्या, आपको क्या कहना है बताइए 0586861003 पे, डू यू थिंक दैट जो रूट विल बी एबल टू ब्रेक सचिन्स रिकॉर्ड, और यू थिंक नो ही इज वे टू फार फ्रॉम दैट, एंड दो साल बहुत लंबा टाइम होता है, इसमें इंजरी हो सकती है, इसमें कुछ हो सकता है, यू रन आउट ऑफ लव फ्रॉम द बोर्ड एंड द बोर्ड विल से अच्छा ठीक है चलो जो रूट तुम्हारी छुट्टी, अगले साल से तुम नहीं खेलोगे, ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट मैच है। मैक का मैसेज आया सचिन इज सचिन, क्या बात है, बात बराबर है, सचिन इज सचिन, सचिन जैसा कोई नहीं है कि नहीं। तो आप लोग जल्दी से मैसेज करके बताओ, क्योंकि मुझे ना बड़ा मजा आता है ये सब ऐसे नंबर्स वंबर स्टैट्स वैट्स देखने में, कि अगर हम देखें ना कि अगर जो रूट की बात करें तो जो रूट ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन द 13 ईयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट दैट ही इज प्लेड ही स्कोर्ड 1,926 रन्स, ठीक है 22 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 22 टेस्ट मैचेस में 1,926 और 52 के एवरेज से रन्स बनाए हैं उन्होंने, कितने 52 के एवरेज से, 52 की एवरेज से उन्होंने रन्स बनाए हैं। तो यानी कि भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको रन्स बनाने में मज़ा तो आता है, 6 सेंचुरीज लगाई है उन्होंने, 9 हाफ सेंचुरीज भी लगाई है, तो उनको मज़ा तो आता है भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ रन्स बनाने का को। लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि जो भी हो जाए, जितने भी आपने बनाए रन्स रिकॉर्ड जो भी बनाए, भाई सचिन पाजी का रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए, यानी कि लेट हिम मेक 15,920 रन्स एंड नॉट गेट टू 15,921, नॉट ब्रेक दैट रिकॉर्ड, दैट इज माय थॉट, यू कैन ऑलवेज शेयर योर थॉट्स। मीनवाइल वी विल हैव अ क्विक चेक ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द टेस्ट मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। England has come out to bat again after getting New Zealand all out on just 113 runs with Ollie Robinson picking up 5 wickets. But ha, agar aap samajh rahe ho ke bhai ye test match mein kya ho sakta hai, to overcast condition hai, mujhe nahi lagta hai ki zyada high scoring match hoga ye, abhi bhi conditions jo hain aise lag rahe hai badal upar chhaye hue hain, to ye match thoda sa mujhe lagta hai ki jaldi khatam ho sakta hai, and agar jaldi khatam hoga iska matlab ye ki bhai फिर से हमारी जान में जान आएगी और हम खुश होंगे कि जो रूट जो है वो सचिन के रिकॉर्ड से अभी भी दूर है। एजेंडा है भाई मेरा ये, तो यू कैन ऑलवेज जॉइन इन दैट एजेंडा बाय मैसेजिंग मी ऑन 0586861003, एंड व्हाइल यू डू दैट विल टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक राइट हियर ऑन टीएसबी टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस। आई एम नील ओझा, आई विल बी हियर ऑन टॉक 100.3।
1: This is Talk 100.3.
2: Trade 24/7 gives UAE traders access to global markets with instant deposits and withdrawals, low spreads and real-time insights.
1: This is Talk 100.3.
0: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. We've been talking about AI. We've been talking in detail about AI. But what about the human side of it? Where does one understand the difference between ki kitna AI ko use karna hai and kitna usse dur rehna hai? You know, main Pranav se baat kar raha tha bahar, and we got into trying to understand the financial aspect of using AI, right? कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अपनी हेल्थ एडवाइस के लिए AI को यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए AI को यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेयर द ह्यूमन इमोशंस कम इन टू प्ले। ऑल्सो कहीं पर ऐसा है, एक फाइन लाइन है अबाउट नॉट यूजिंग AI फॉर taking financial punts as an investments ke liye, trading ke liye, especially investments jo theek hai, but trading ke liye, theek hai. And that is where a fantastic debate comes about. I would like to invite Pranav on the conversation because he did tell me that he tried doing this and he found something really very interesting. So Pranav, what was it? What did you try doing with AI and trying to look at some of the stocks?
3: Well, again, coming to the prompts and the questions that are around it, and again, a financial decision like this obviously needs to be taken in a sensible manner, comparing the risk to reward ratio and to everyone's sensibilities. So hum finance experts to bilkul nahi, from my end I can say that I'm not a finance expert, but certainly one thing that it did help me with is try and understand what the trends are, what is something that people these days are looking towards in, say, the US market. So with ChatGPT and OpenAI, or rather Claude for that matter, what I was able to try and gather information was to what are some of the stocks that are, you know, going upwards, what to buy, what to look forward to, whether you hold or you sell, what are some of the big investors like chahe wo Jackson Hong ho gaya from Nvidia, whether it's Bill Gates, what is Warren Buffett doing, for example, what are some of the politicians in the US doing, because wo khud apne markets mein invest karte hain sometimes, you know, again, keeping things like insider trading and all that aside, you know, just in regular stuff, Middle East ke jo situation hai uske hisab se what could we be looking at. There was a trip for Donald Trump to China, and a lot of the topic or a lot of the talking points around that was to do with semiconductors, was rare earth minerals. So you keep an eye around, you know, what companies might react, or, you know, what's, you spoke about semiconductor ETFs, for example, and I think that is the future, semiconductors. And for anyone who still hasn't invested in it, please do your research, read up on it, and do look at semiconductor options, look for, you know, the ETFs if you want to go for individual stocks in itself.
0: Wo sab to theek hai, wo sab theek hai, main AI application ki baat kar raha hu, because what you did was,
3: and what AI helps you is exactly keep track of it. You know, for example, from a very outside perspective, a Trump going to China might not be the biggest of interest for us, you know, from an outside zone. But when you know that you have an AI tool, for example, at hand, and if you want to invest in it, jo bhi situation hai duniya ke kone mein, you can feed that into OpenAI and say, okay, how can I make money out of it?
0: Okay.
3: It's a very oversimplified way of thinking.
0: It is extremely oversimplified. मैं थोड़ा सा उसको बताता हूँ कि प्रणव ने जो बात करी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करी है कि how do you use all the information that is around us to make us understand कि how will this impact your financial investments or a particular stock that you're following. ठीक है, अब आपका जो भी फाइनेंशियल जर्नी है, सबकी अलग अलग फाइनेंशियल जर्नी होती है, एंड ये हम सबसे पहले कहते हैं कि हम यहाँ पर आपको फाइनेंस में एजुकेट करते हैं, फाइनेंस में एडवाइस नहीं करते हैं. दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस पीस कि आप इस स्टॉक में पैसे डालो, उस स्टॉक में डालो, ऐसा कुछ नहीं हम बोलते हैं. हम आपको सिर्फ बताते हैं कि क्या, किस तरह से आप इन अवेलेबल टूल्स को आप यूज कर सकते हो. दीज मेथड्स, दीज टूल्स आर प्राइमेरली फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली. ठीक है, कि अभी सिचुएशन क्या है, करंट सिनारियो क्या है, why is crypto trailing like this, you know, 66,000 पे बिटकॉइन चल रहा है, क्यों इतना कम पे चल रहा है, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि by the end of the year 125,000 पहुंच जाएगा,
3: right.
0: ठीक है, पर फिर बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अभी ऐसा क्यों चल रहा है, दैट इज ऑल एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है. ठीक है, कि लोगों को क्या लग रहा है कि भाई कहाँ पे किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का ग्रीड है, और इन सब के आसपास जो है न्यूज़ जो आपकी आपको मिलती है, आपके कानों तक पहुँचती है, उन सब न्यूज़ का इफेक्ट होता है. ठीक है, प्रीकर्सर टू एनी इवेंट दैट इज़ हैपनिंग, द पोस्ट मैथ ऑफ एनी इवेंट दैट हैज हैपेंड, वो सब की वजह से सारे स्टॉक प्राइजेस ऊपर नीचे मूव होते हैं, चाहे फिर वो गोल्ड हो, ऑयल हो, कमोडिटीज़ हो, आपके इक्विटी हो, US मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स हैं, ईस्टर्न मार्केट्स हैं, UAE की मार्केट्स हैं, ये सब का इंफॉर्मेशन आप कितना रख पाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट.
3: हाउ विल यू कीप ट्रैक,
0: यू कैन नॉट,
3: एंड इन टर्म्स ऑफ रिमेंबरिंग इट, रिमेंबरिंग द ट्रैक ऑफ इवेंट्स,
0: ट्रू,
3: दैट हैव ऑलरेडी यू नो टेकन ओवर, दैट हैव पास्ड इन द लास्ट कपल ऑफ डेज,
0: अनलेस एंड अंटिल यू नो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट साइकिल वेर यू आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर अ लिविंग. ठीक है ना, कि अगर समझो मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ तो मुझे शायद पता होगा कि आईपीएल में क्या चल रहा है.
3: बिल्कुल
0: ठीक है. बट अगर मैं इतना अगर मैं एक बस क्रिकेट थोड़ा सा देख लेता हूँ, जैसे फुटबॉल में थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो आई नो व्हाट इज हैपनिंग बट आई डोंट नो इन डिटेल एज मच डिटेल कि क्या हो रहा है. ठीक है ना. आई वाज वाचिंग एन एपिसोड यस्टरडे ऑफ दिस शो कॉल्ड सूट्स. इट्स अ प्रोबब्ली थर्ड रीरन फॉर मी बिकॉज आई लव दैट शो.
3: थ्री रीरन्स.
0: या थर्ड रीरन राइट नाउ. तो उसमें एक एपिसोड है जहां पर हार्वी स्पेक्टर इज मीटिंग समवन हु इज इनटू अ ट्रेडिंग बिजनेस फॉर इयर्स, यू नो, वेरी वेरी सीनियर गाय, और उसको बोलता है कि यू आर यू नो द SEC, the Securities and Equities Commodities Organization is coming against you because they sense that you're doing insider trading.
3: Right.
0: तो बोलता है कि मैं insider trading नहीं करता हूँ, मैं gut feeling के हिसाब से trade करता हूँ. I keep an eye on everything that's happening. So like, how is that possible? तो Harvey Specter जो lawyer उनको वो कहता है, pick up that newspaper there and pick any stock and tell me. तो उसको एक stock का नाम बताता है, ठीक है, फलाना stock. वो बताता है कि इट्स करंटली प्राइस्ड एट दिस, उसका पी ई रेशियो ये है, इट इज डूइंग दिस, इट इज डूइंग वेल बिकॉज ऑफ दिस, उसका लोएस्ट इतना था, हाईएस्ट इतना था, डे इतने पे शुरू हुआ, डे इतने पे क्लोज हुआ था कल, आज का ओपनिंग इतना है, करंटली ट्रेडिंग एट दिस, एंड डिस्पाइट ऑल द थिंग्स दैट लुक पॉजिटिव दिस स्टॉक विल नॉट डू वेल बिकॉज उसका सीईओ जो है इज नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग द कंपनी.
3: राइट.
0: ठीक है. Random stock ka batata hai. I mean, obviously, this is all scripted. It's a show. But it just tells you that someone who's living that life will know the insights of
3: Bilkul.
0: it. But you and I, because hamare kaam full-time job kahin aur hai, hum aur kuch kaam karte hain, to hamara utna information, hum utna consume hi nahi kar paate hain. Theek hai? Aur agar consume karte hain, to usko hum analyze nahi kar paate hain. That is where AI comes into play. Where you actually tell AI, ki I'm looking at this particular stock. ठीक है. एंड मुझे इस स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ बेस्ड ऑन द करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, बेस्ड ऑन ट्रंप्स विजिट टू चाइना, बेस्ड ऑन यू नो व्हाट पोटेंशियली कुड बी फेड्स कॉल ऑन इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉपिंग और नॉट ड्रॉपिंग, हाउ विल दिस वर्क, क्वार्टरली अर्निंग्स आए हैं, क्वार्टर अर्निंग रिपोर्ट्स के बेसिस पे क्या बन सकता है, क्या हो सकता है. तो आपको AI जो है ना वो सबको एनालाइज करके एक एनालिस्ट की तरह आपको बताएगा कि दिस इज व्हाट इट इज. बट इवन AI विल नॉट टेल यू टू बाय और नॉट टू बाय. आपको कॉल एंड पुट जो है वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो बताता भी है तो भी आई थिंक यू शुड टेक योर रिस्क्स ऑन योर बेसिस एंड नॉट बेस्ड ऑन AI. क्योंकि कहीं पर देयर इज अ थियरी के क्वांट जो है, दैट इज रोबोटिक्स जो है, AIs जो है, कैन डू बेटर ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग एज कंपेयर टू ह्यूमंस बिकॉज उनमें इमोशंस नहीं होते हैं. बट एट द सेम टाइम हैव यू ट्रेन्ड योर AI इनफ टू डू इट सो वेल? एंड द आंसर इज नो. Because you don't do it every single day. आपको उसको उतना train करना पड़ेगा ताकि वो AI is completely in sync with the markets, with that particular stock, with that particular category. And if that is done, then yes. But otherwise, we always think कि कहीं पर जाकर ये जो है आपको गलत रास्ता ना दिखा दे. इसलिए वो information सिर्फ understand करो, absorb करो, उसे back test करो. And then if you want to trade purely based on your risk appetite, you should trade.
3: And doing something like this, certainly it can lead to two ways. For example, someone finds it so interesting that the curiosity factor gets multifold for them and it becomes a regular practice. Theek hai, I see it for about half an hour or 40 minutes today. I come back and then I check maybe say 40 minutes more tomorrow. And it becomes a recurring sort of a... It becomes part of your daily duty, right? And that's how your curiosity builds. And as you feed more and more to the language module, and that's how you train it as well. And then it starts reciprocating more information, more detailed, you know, the subject matter is a bit more vast. It starts to understand what your risk assessment is as well. Like, for example, if there was a situation where I was looking at some semiconductor options, smaller businesses, and I said, look, I've only got $100 right now. Right? And what do I do? So with $100, it'll tell me go for the safest option, which is say 50-30-20 breakdown. For example, it'll give me three options, say 50-30-20. And then I'll say, no, I'm happy to push it more. Then it'll say, do you want to do 50-50? And then it'll probably suggest 50-50. And then I'd be like, no, but you know, I'm not confident in one of the stocks, but I want to go bullish on the two other. Then it probably will suggest, so do 50, 40 and 10. You know, things like that. So that's how you train your module. That's how you start to, you know, assess how you want to approach your own investment portfolio. And the other extreme of it is either it becomes too much information on the screen for you that you cannot absorb it, that you just think, ah, you know what, this is not for me, let me just be. You know, so there's two extremes that people
0: absolutely
3: can
0: go. And see, you know, irrespective of whichever, you know, method you're using, you're trying to use it for information, for knowledge, for understanding, for trying to just brainstorm with someone who understands this based on the information that it holds. You also need to understand that your LLM, your OpenAI, ChatGPT, Claude, jo bhi hai, theek hai na? At the core of it, they're machines, right?
3: Yeah.
0: And they're not trained to be masters. They're trained to be, more often than not, yes boss.
3: Yeah.
0: So agar aap usko bologe, like you said, that you said ki, I'm not okay with going 50, 30, 20. I want to go 50, 50, 50 or probably bullish on this. Toh wo bol dega ki, haan, okay, no problem at all.
3: Yes. It'll tell you whatever you do is the best thing.
0: Exactly.
3: Exactly what it is.
0: So you need to understand ki, boss, that could also be wrong. Because just because you feel so does not mean that ChatGPT or Claude or whatever will say the same thing. So you also need to develop your AI in certain way where it actually is brainstorming with you, giving you ki nahi bhai, तेरी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा यहाँ पे जो स्टेटस है उसके हिसाब से ऐसा करना पड़ेगा.
3: Can I slightly sidetrack from stocks?
0: हाँ बोलना.
3: Okay, there's another story, and this is what AI does so well into just maintaining your peace of mind, your subconscious mind को थोड़ा ठंडा रखने के लिए. It was an issue with a car that I developed a couple of months ago, and I thought, you know, this is absolutely going to sit on top of my head, needs a complete full rework on it. Probably I'm looking at a 20,000-40,000 dirham costing, whatever. I start feeding questions and my own doubts into ChatGPT, and then it starts breaking things down for me, saying that it's completely okay. This was bound to happen after a certain time for your car. You took the right action. It's good you didn't drive it further. You know, it breaks it down into making you feel like you've taken all the right steps for now, and that there are different variations for how much your repairs might cost. So don't jump the gun and think extreme. So aise breakdown karke na, you know what? We've gone through all these steps, but just be prepared that you might pay 10,000, you might pay 20,000, you might even end up paying 5,000. But the fact that you identified it and you're sitting in this juncture where you can think about all these options, that in itself is a good thing.
0: Which is a good thing. I mean, it definitely, you know,
3: that's
0: gives
3: what
0: you
3: ChatGPT does.
0: So see, there are good and the bad and the ugly parts of AI, and that's precisely why we say that if you don't get into the water, you'll never learn how to swim. Yeah. ठीक है ना, आपको जरूरी नहीं है कि स्विम करके आपको फिर बाद में इंग्लिश चैनल पार करना है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आना चाहिए, एआई को यूज करना सीखिए. एंड अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स अबाउट एआई और द यूजेज ऑफ इट और व्हाट डू यू यूज और व्हाट डू यू वांट टू यूज इट फॉर एनीथिंग, वी आर ओपन टू हैव कॉन्वर्सेशंस. एज प्रणव, आई एम हियर, एंड 0586861003, दैट्स अ व्हाट्सएप नंबर, तो इस पे व्हाट्सएप कीजिए आप और पूछिए अपने सवाल, हम जवाब देने को तैयार हैं. नील और प्रणव on TSB. We'll take a break and be right back on Talk 100.3, a part of the Fun Asia Network.
1: This Talk 100.3. Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
4: BBC News, I'm John Shea. Ukraine says it's carried out marine drone attacks in the Sea of Azov and a tanker carrying grain that was stolen from Russian-occupied Ukraine. Azerbaijan said five of its citizens were killed in the attacks. Ukrainian officials have admitted one drone exploded in the Romanian Black Sea port of Constanza, far from the Azov Sea. President Putin is expected to deliver the keynote address to his annual economic forum in St. Petersburg shortly, with aides insisting that Russia remains as powerful as ever. Moscow is running an increasingly large budget deficit because of its invasion of Ukraine. Iran says its navy has fired warning missiles and drones at American warships in the Gulf of Oman, saying they'd been harassing commercial vessels. Earlier, the US military said it had intercepted a sanctioned ship in the Indian Ocean. The US economy has created significantly more jobs than expected for a third month in a row. Almost half of them are in leisure and hospitality hires in the run-up to the Football World Cup. Mali's military government has banned the use of motorcycles outside urban areas in an attempt to tackle armed groups. The insurgents often move across terrain on bikes. and three men convicted of stealing a priceless ancient Romanian helmet have been jailed for 4 years each in the Netherlands. The 2,500-year-old golden helmet of Quatzer Feneschti was snatched from a Dutch museum where it was on loan last year. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Grey coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna, speedy, easy hair colour. Made in Italy. Talk 100.3. This is Talk 100.3.